खिले गिलाओ के वो टाउट सख्स हो गया ना खुनी लाओ चाओ के नमन लोगों में पी वाले पेनिक पटा सिला ले गया ना आप लोगों ने तमारी की वाला में अम्मा के चंग में उन्हें संग ना तमालो तलो तुंगा सुलाओ मिगिची

0: जब उतक बहुत उतक पकड़ने जगह निगाह जब इसके आप दाम में अच्छी नहीं लो लाख ही टाइम का लाख ये ना मेरा बुत
1: दाम ने सभी के साथ तो बुत नो वे आप कल जाक दाम ना पंजाब तो उन्होंने गाला माइला तब को आज कम ये आप तो कताब लुनी ला ममे सारे आप तो ने तब को क्यों आये कुप कम ये लाओ मत जुटाओ दाम गाला मत ला दाम ना कल लगती है कब को वो ये ना मी